0: किया था बिशप कुछ इतना
1: थ्रू माय आर्टिस्टिक प्रैक्टिस आई वांटेड टू टर्न माय वर्क इनटू फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स सच एज बैग्स एंड एवरीडे फैशन एक्सेसरीज
0: कि दादा हम तोर जीवो थे कि